0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
3: You're listening to City FM 89.
4: We're playing your song.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
1: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है. मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
3: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ता है. लेकिन जब कदम ही आगे न बढ़ सके तो ख्वाब थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है. तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं.
4: City FM 89.
5: We are playing your song.
6: You're listening to
7: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
8: Welcome back to Full Disclosures. There is so much to talk about. Number one, the protests being postponed. The fact that just the stories coming out of Pakistanis feeling stranded and blocked off from routes. It's just been pretty wild. The like mass arrest which took place with PTI's like Imran Khan's family members, essentially. Very, very odd. The optics of all of it, I can't even begin to understand. I'm no PR maven, but I've been in the media and entertainment industry since 2014. And I gotta say, might want to do a team overhaul because the choices are very, very bizarre. All right, up next, here's Drake with Janice.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
4: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें
5: The first time at the disco When you love someone, it's natural, not Holiday with friends Retro cinema

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें
4: City FM 89
5: We're playing your song
6: Hold on special delivery coming through
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
1: City FM 89.
10: We're playing your song.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: सिटी FM 89
3: योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन
1: योर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स
1: City FM 89.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 PM.
3: City FM 89.
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Marvel Television and Disney Plus will conclude Daredevil Born Again following its third season. Production on season 3 wrapped recently and is undergoing post-production ahead of its 2027 premiere.
3: City FM 89
1: on the dial.
7: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: 89
2: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-stop hits.
8: No talk. Just you and the music.
2: Back to back starts now.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: दिस इज
4: सिटी FM 89 We're playing your song. Yeah.
5: Mornings evolve, and so do we.
6: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
7: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on The Breakfast Show.
5: The freshest music, the hottest gossip.
6: And the energy Gen Z lives on.
5: It's bold, it's current, it's your morning routine.
6: The Breakfast Show.
5: Only on City FM 89.
8: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: We are
11: City FM 89.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: कॉफी का मूड है तो डिस्काउंट भी होना चाहिए. अब इजी पैसा डेबिट कार्ड्स के साथ पे करें और पाएं अप टू 30% ऑफ अपने फेवरेट कॉफी ब्रांड्स पे. टिम हॉर्टन्स, कॉफी मिस्ट्री, थर्ड कल्चर, सेकंड कप, ग्रीनो एंड मेनी मोर अक्रॉस पाकिस्तान. तो सिप करें, सेव करें और एंजॉय करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: यू आर लिसनिंग टू बीट कैंप.